0: थी कि वो पुरुषों की स्पर्धा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगी। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है 1.93 मीटर की ऊंचाई लांघना। पूजा ने यहाँ पर शुरुआत की 1.72 मीटर से, उसके बाद 1.77 मीटर की ऊंचाई पार की। इसके बाद बहुत तेज बारिश आई और करीब 1.5 घंटे के लिए स्पर्धा को रोक दिया गया और लगता है पूजा की रिदम भी शायद यहीं पर टूट गई। जब स्पर्धा आरंभ हुई 1.82 मीटर की ऊंचाई फांदने की कोशिश पूजा ने की लगातार, लेकिन वो इसको पार नहीं कर पाई। पूजा की कूद की ऊंचाई बस यहीं थम गई और साथ ही पदक की उम्मीद भी जाती रही।
1: A ray of sunshine for all the fans of weightlifting out there, and definitely a moment of pride for all Indians to smile as Harjinder Kaur won the silver medal in the women's 69 kilogram category finals, thereby taking the total medal tally to 7 in weightlifting. Harjinder won the silver medal with a total of 227 kilograms, which included 101 kilogram in snatch and 126 kilogram in clean and jerk. She put in a dominant display in the snatch category of the women's 69 kilogram final. She lifted 96 kilogram, 99 kilogram and 101 kilogram in her 3 attempts in snatch, and thereby her best effort in snatch was recorded at 101 kilogram. Thereby her total went on to become 227 kilogram, which bought India the 7th medal in weightlifting, and Harjinder contributed by bringing in the silver in the women's 69 kilogram category.
2: 1 year से सर मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए रिजल्ट है इसका ही। फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, डाउन नहीं होने दिया कभी, हर टाइम मेरा साथ दिया है।
1: Well, heartbreak for all the lovers of weightlifting. India's Nirupama Devi Serum had raced her opening attempt in the clean and jerk to 123 kilogram in the women's 63 kilogram final after initially registering 115 kilogram. But she failed to complete all her 3 attempts in clean and jerk at 123 kilogram in the women's 63 kilogram final. With no successful lift recorded in the clean and jerk round, Nirupama was out of medal contention and registered a did not finish in the women's 63 kilogram final.
0: कल भारत के 5 मुक्केबाज रिंग में उतरे अपने ग्लव्स का दम आजमाने के लिए। पांचों बड़ी मेहनत कर राउंड ऑफ 8 में पहुंचे थे और अब पदक की खुशबू उन्हें बस आने ही लगी थी। एक जीत और पदक पक्का हो जाएगा, लेकिन यही लक्ष्य नहीं है, मन में तो गोल्ड मेडल बसता है। कल शुरुआत की हरियाणा की उर्वर जमीन से निकली नई पौध की प्रीति पवार ने बचपन में लड़कों के साथ मुक्केबाजी की प्रैक्टिस और पैरी करते करते 22 साल की ये लड़की विश्व कप में स्वर्ण पदक जीत लाई है। कल उसके मुकाबले थी रेड कॉर्नर में नॉर्दर्न आयरलैंड की निकोल क्लाइड। प्रीति की चपलता, मौके चुरा कर धड़ाधड़ मुक्कों की झड़ी लगा देना, इसका निकोल के पास कोई जवाब ही नहीं था। तीनों राउंड सर्वाइव कर लेना ही निकोल की सबसे बड़ी उपलब्धि।
3: We have a unanimous decision. The winner in the blue corner from India, Preeti Preeti.
4: It's really nice to have a strong team because it does matter from which country you belong. So, really nice.
0: अब सेमीफाइनल में प्रीति का मुकाबला जिम्बाब्वे की कैथरीन वापे से होगा 31 जुलाई को। बस 2 दिन बाद अपना 20वां जन्मदिन मनाने जा रही प्रिया घंघास भी बड़ा पीछे क्यों रहती। स्कॉटलैंड की निया मिशेल को हराकर उन्होंने खुद के लिए ही तोहफा पक्का कर लिया। हालांकि ये बाउट जीतने में उनको बहुत पसीना बहाना पड़ा। अब तय होना था 3रे राउंड में कि किसको मिलनी है जीत, और ये पूरी तरह प्रिया का रहा। एक के बाद एक उन्होंने जब 3 स्ट्रेट पंच मिशेल के चेहरे पर जड़ दिए, तभी सबको लग गया कि अब तो ये प्रिया पंघास ही जाने वाली हैं अगले राउंड में। स्प्लिट डिसीजन आया और निर्णायकों ने ये बाउट प्रिया के नाम कर दी।
3: द विनर इन द रेड कॉर्नर फ्रॉम इंडिया, प्रिया प्रिया।
0: अब पिछले हंगचाओ एशियन गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता परवीन हुडा पर जिम्मेदारी थी मुक्केबाजों के इस शानदार प्रदर्शन को आगे बढ़ाने की। सामने रेड कॉर्नर में थी इंग्लैंड की शाचा हिकी। सारा स्थानीय समर्थन हिकी के साथ ही था। कांटे की लड़ाई हुई, लंबी छहरी परवीन ने कोशिश तो बहुत की, मुकाबले में अपने क्षण भी उन्होंने कुछ कमाए, लेकिन अंततः रेफरीज का निर्णय 2-3 से उनके विरुद्ध गया और साथ ही पदक की उम्मीद भी चकनाचूर हो गई। नाम है जदुमणि सिंह, आज वो भारतीय सितारा है, उसके मुक्कों से विपक्षी थर्रा रहे हैं। कल क्वार्टर फाइनल में जाम्बिया के मांगो मौले उनके खिलाफ थे। पंचेस, अपरकट्स, जैब्स और साथ में पूरी होशियारी से गार्ड बनाए रखा जदुमणि।

0: वरी ने, और इसका परिणाम यह हुआ एक और सर्वसम्मति से मिली हुई 5-0 की विजय। छठे दिन की अंतिम बाउट में भी एक भारतीय था, 90 किलोग्राम भार वर्ग में कपिल पोखरिया रेड कॉर्नर में। उनके सामने थे स्थानीय बॉक्सर रॉबर्ट मैकलाउल्टी। कपिल ने कोशिशें तो बहुत की, लेकिन रॉबर्ट उनसे हर क्षेत्र में बेहतर साबित हुए। 5 में से 3 मुक्केबाजों ने पदक पक्के कर लिए और कहानी तो अभी बाकी है।
1: India's para swimmers Ravi Veera Venkata Bhavani Karthik Buddigana and Ali Imam led India's campaign into the finals, recording a historic top 8 finish but narrowly missing out on podium placements at the Glasgow 2026 Commonwealth Games. In men's 100-meter freestyle S13 final, in a thrilling race, Buddigana came agonizingly close to a medal, finishing joint fourth with a time of 57.57 seconds, less than a second away from the bronze medal winner. Ali Imam completed the double final appearance for India, finishing seventh with a time of 1 minute 03.73 seconds. We may not have had a podium finish at the ongoing Commonwealth Games 2026 for our para swimmers, but this achievement in itself calls for nothing less than a celebration. What looked like a promising start from our swimmer Sri Hari Nataraj today did not quite make it to a promising finish. In the semi-finals, Nataraj finished 7th. In the semi-final, he too, and 11th overall. He clocked 25.29 seconds, an improvement from his heat timing of 25.52 seconds. But it was not enough to make the 8-man final. Veteran swimmer Sajan Prakash was eliminated in the preliminary rounds. Placed 8th in his group and 28th overall in the men's 50-meter butterfly with a time of 24.94 seconds, he failed to advance to the next round. On the 6th day of the Glasgow 2026 Commonwealth Games, the Indian men's pair team of Dinesh Kumar and Navneet Singh defeated the Cook Islands in their men's pair sectional play match in bowls. This critical group stage win kept India's knockout qualification hopes alive as part of the round-robin sectional format. In women's singles sectional play in bowls, Nayanmoni Saikia made an impressive start in a women's singles lawn bowls campaign at the Glasgow 2026 Commonwealth Games, securing a crucial opening sectional play victory against Wales Amy Williams.
0: एथलेटिक्स के हिसाब से आज का दिन भारत के लिए बहुत ही गर्मा गर्म होने वाला है। तेजिंदर पाल सिंह तूर शॉर्ट पट में उतरेंगे और उनके साथ होंगे समरदीप सिंह गिल, जिनको कहीं से आप हल्का नहीं आंक सकते। 200 मीटर की हीट्स में अनिमेश कुजूर उतरेंगे, 400 मीटर की बाधा दौड़ में यशाश पलाक्ष और संतोष कुमार टी होंगे। मुरली शिशंकर पर सबकी निगाहें रहेंगी, हमारे देश के सबसे उम्दा लॉन्ग जंपर, आज उन्हें पदक के लिए छलांग मारनी है। वहीं लोकेश सत्यनाथन भी साथ में है। मनप्रीत कौर महिला शॉर्ट पट में चुनौती पेश करेंगी और पारुल चौधरी 3000 मीटर स्टीपल चेज में उतरेंगी।
1: In weightlifting today, we shall be having the women's 77 kilogram category event, in which the Indian representation is going to be done by the 19-year-old Indian Sanjana. She's a weightlifter who competes in the women's 77 kilo category. In lawn ball, we'll have the men's pairs category, in which Navneet Singh and Dinesh Kumar shall be representing India in the sectional play round. In lawn balls, we'll also have the women's singles, in which Nayanmoni Saikia shall also be representing India in the sectional play round.
0: बॉक्सिंग में फिर सबकी निगाहें रहेंगी, क्योंकि जो जो मुक्केबाज बाउट जीतेगा वो पदक पक्का कर लेगा। 6 मुक्केबाज रिंग में उतरेंगे, 51 किलोग्राम में साक्षी, 70 किलोग्राम में अरुंधति चौधरी, 60 किलोग्राम में सचिन सिवाच, 80 किलोग्राम में अंकुश यादव और 90 से ज्यादा भार वर्ग में नरेंद्र बेरवाल, और इसके साथ 57 किलोग्राम में जो आखिरी बाउट होगी कल वो होगी जैस्मिन लंबूरिया की।
1: In swimming, first we shall be witnessing the men's 200-meter freestyle category event, in which all the eyes are gonna be today on Sajan Prakash, Anish Sunil Kumar Gowda. This shall be the Heat 4 and Heat 5 round stages, in which all the eyes will be on these two swimmers today from India. In para swimming also, we shall be having the men.

0: centuries-old culture of living in harmony with nature and powered by the collective will of the people. Addressing an event in New Delhi, Minister of Environment, Forest and Climate Change Bhupendra Yadav today said that tiger conservation is not merely about protecting one species but about safeguarding the entire ecological system and preserving India's compassionate relationship with nature.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
2: इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स इन कंजर्वेशन अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लीडरशिप द टाइगर पॉपुलेशन हैज इंक्रीज फ्रॉम 2226 टू ओवर 3600 टाइगर रिजर्व्स हैव एक्सपेंडेड फ्रॉम 47 टू 58 एंड एलिफेंट रिजर्व्स हैव आल्सो गॉन अप फ्रॉम 28 टू 32 अंडरस्कोरिंग द कंट्रीज ग्रोइंग कमिटमेंट टू वाटर कंजर्वेशन डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स हैव आल्सो ग्रोन फ्रॉम 26 टू 100
1: डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स की संख्या 26 थी जो बढ़कर के अब 100 हो गई.
0: During the event, he also launched Ecotourism web portal developed by the National Tiger Conservation Authority. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Lok Sabha continues discussion on Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026. Government says bill